0: गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, जिसका हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सवाल होता है कि यार किस घड़ी की बात कर रहा है भाई साहब, उसी घड़ी की जिसका पूरे हफ्ते हमें इंतजार होता है, संडे वाली नहीं सैटरडे वाली मॉर्निंग की, क्योंकि जो संडे का मजा है ना वो सैटरडे में ही आता है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ सैटरडे में होती है और वीकेंड के सारे प्लान हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं शनिवार के दिन। वीकेंड का वार शनिवार, इस लफ्ज़ के अंदर ना तो कितना सुकून है ना, वो मंडे वाली भागदौड़ नहीं है, टेंशन नहीं है, मंगलवार फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बुधवार वाला रोना नहीं है, बस शनिवार वाला सुकूनपन है आज इस शनिवार के दिन। तो इसी सुकून को और भी आगे लेकर जाएंगे और बहुत सारी बातें, मुलाकातें और हसीन नगमों का साथ भी होगा, क्योंकि सैटरडे यानी कि रिलैक्स वाला दिन होता है। तो अपने शो में बस रिलैक्स वाली बातें होती है, ना गहरी ना कुछ दिमाग को टेंशन देने वाली, बस सुकून का एहसास करवाने वाली। सो गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, वीकेंड का वार में शो का आगाज करते और भी बहुत सारी बातें लेकर आऊंगा मैं कुछ ही देर में। अभी तो अपनी मुलाकात का सफर शुरू हुआ है, बहुत कुछ बाकी है अभी।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कभी कभी एक घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें बचपन रहता है। कल पापा का फोन आया था। उन्होंने बहुत नॉर्मल से आवाज में बात की और कहा, बेटा हमारा पुराना घर बिक गया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल एकदम खामोश हो गया। वो घर जहाँ पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, जहाँ दीवार पर मेरी हाइट की लकीरें बनती थी, जहाँ माँ की आवाज़ गूंजा करती थी, जहाँ पापा ने पहली बार कंधे पर बिठाकर पतंग उड़ाई थी, और वो छत जहाँ सपने आसमान से भी बड़े लगते थे, आज वो सब किसी और का हो गया। मैं सोच रहा था, क्या नए लोग भी उस दीवार को वैसे ही देखेंगे? क्या उन्हें पता होगा कि उस कोने में कभी एक छोटा सा बच्चा बैठकर होमवर्क करता था और उस आंगन में कितनी बार बारिश में भीगा था? शायद नहीं, क्योंकि घर बिकते हैं, यादें नहीं। फिर अचानक समझ आया, घर छूट गया है लेकिन बचपन नहीं। वो अब भी मेरी बातों में है, मेरी हंसी में है, मेरे अंदाज में है। और शायद इसीलिए कहते हैं, घर की कीमत रजिस्ट्री बताती है लेकिन उसकी असली वैल्यू सिर्फ यादें जानती है। अगर आज भी आपके पास अपना बचपन वाला घर है, तो कभी फुर्सत से उसकी दीवारों को देखना। हो सकता है उन पर पेंट नया हो, लेकिन उनके अंदर आज भी आपकी हंसी गूंजती है। और अगर वो घर अब किसी और का हो चुका है, तो उदास मत होना, क्योंकि घर का पता बदल सकता है लेकिन बचपन का एड्रेस कभी नहीं बदलता। वो हमेशा दिल में रहता है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, हम सबके बचपन की कहानी है। कभी कभी दीवारें नहीं, उनसे जुड़ी हुई जिंदगी छूट जाती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे. मैं आपसे कहूँ कि मीठा पूरी तरह छोड़ना जरूरी है. बस समझदारी से खाने की जरूरत है आपको. तो कर पाओगे आप? थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लोगे. हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि यार हेल्दी बनना है, मीठा बिल्कुल बंद. लेकिन असल बात यह है कि बैलेंस सबसे जरूरी होता है. अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो पहले स्टेप है क्वांटिटी कम करना. मान लीजिए रोज दो मिठाई खाते हैं तो एक से शुरुआत कीजिए. दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज जूस की जगह पानी, नींबू पानी या बिना चीनी वाला बेवरेज ट्राई कीजिए. बस इतना सा चेंज भी शुगर इंटेक को काफी कम कर सकता है. तीसरा, जब मीठा खाने का मन करे तो कभी कभी सीजनल फ्रूट्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. उसमें नेचुरल स्वीटनेस के साथ फाइबर और न्यूट्रिशन भी मिलते हैं. हर चाय या कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं है. वो धीरे धीरे कम कीजिएगा. लेकिन याद रखिए, अगर आपको डायबिटीज है या डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल करने के लिए कहा है तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले उसकी सलाह डॉक्टर से जरूर ले. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. आज का हेल्दी मंत्र यही है, जिंदगी में मिठास जरूर रखिए लेकिन सिर्फ चीनी से नहीं, अपनी मुस्कान और सेहत के साथ. हेल्दी लाइफ का मतलब मीठा छोड़ना नहीं, मीठा समझदारी से खाना होता है. याद रखिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए.

0: Let's talk about mental health, क्योंकि mental health well तो जिंदगी all is well. You are listening MGM 90.8 FM. All is well. और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगावकर मैम फ्रॉम MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HOD. सो मैम, मेरा आपसे सवाल आज ये है, अगर मैम किसी कलीग या फ्रेंड को ऑफिस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रगल करते हुए हम देखते हैं, तो हम उसे हेल्प कैसे कर सकते हैं?
1: सबसे पहला तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए. और कभी कभी इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, कोई भी पर्सन परेशानी में कंफ्यूज रहता है, तो हमें उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम हैं, हमसे शेयर करो. बिकॉज हम अच्छा होना भी कभी कभी सामने वाले के लिए प्रेशर बन सकता है. तो हम बड़े सटल तरीके से उनको ये बोल सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, तो अगर आपका मन हो तो हम बात कर सकते हैं. हमको बस इतना बोलना है, हमको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि बताओ, बड़े आप स्ट्रेस में लग रहे हो, बहुत टेंशन है, बता दो, आपको हल्का फील होगा हमको. तो ये चीजें ना प्रेशर क्रिएट करती हैं. और ये जब खुद होके अपने आप आपके पास आए बोलने के लिए, तुरंत हमको सजेशंस नहीं देने चाहिए. पहले शांति से, कामली, पीसफुली हमको उनको सारा सुन के लेना है. क्योंकि कभी कभी आधे से ज्यादा दिक्कतें जब कोई शेयर करता है अपने आप को, तभी उनकी दिक्कतें हल्की हो जाती है, कम हो जाती है. शायद सोल्यूशन शेयरिंग ही होता है बहुत सारे सिनेरियोज में. तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर, नॉन जजमेंटल, एंड वी शुडंट पुश द अदर पर्सन टू स्पीक अप.
0: सो ये सब बात

याद रखिएगा दोस्तों, और अपनी मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा और काम को काम तरीके से रखिएगा, उसको अपने पर्सनल लाइफ में मत लाइएगा वरना आपकी भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। तो बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: फरमाइश मैं पूरी करता हूँ, बस आप मुझे अपने गानों की फरमाइश बताते रहिएगा। आप सुन रहे हो
1: All is well.
0: और इस वक्त ना तो गाने की फरमाइश पूरी करने का वक्त है, और आज गाने की फरमाइश आई है निखिल शेदुर की तरफ से इस गाने के लिए।
2: छुप गए सारे नजारे, मात हो गई।
0: क्या बात यार, बहुत ही बेहतरीन गाने की फरमाइश की है निखिल जी ने। तो छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई। तो ये गाना भी हम प्ले करते हैं निखिल जी की फरमाइश पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने फरमाइश का गाना प्ले करना है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी फरमाइशें दिलो जान से पूरी होती है। सो जल्दी कीजिएगा। बाकी तो अब निखिल जी की फरमाइश पर अगला गाना प्ले करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो ऑल इज वेल।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन क्या कंप्लेंट के बाद FIR होती है क्या? क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर ना एक बड़ा डेटा सामने आया है। पिछले कुछ सालों में लगभग 6 साल के अंदर साइबर फ्रॉड की 54 लाख से ज्यादा कंप्लेंट सामने आई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.4% के आसपास ही FIR दर्ज हुई है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो 54 लाख कंप्लेंट में से लगभग 1,30,000 केसेस पर ही FIR हुई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं होता है, समझ सोचिए आप। देखो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है साइबर फ्रॉड में, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपने कंप्लेंट करने में देर कर दी तो फिर FIR करके फायदा नहीं होता। इस वजह से जैसे ही आपके साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और कंप्लेन करें, फिर उसके बाद FIR की प्रोसेस शुरू होती है। साथ ही साथ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी कंप्लेन होगी पैसे को रोकने के ट्रांजिशन पर एक्शन लिया जाता है। और प्रिवेंशन के लिए कुछ बेसिक बातें भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि अपने शहर में भी साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से OTP किसी को नहीं देना, UPI पिन शेयर नहीं करना, अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना, और फोन पर कोई भी बैंक या पुलिस बनकर आपको कॉल करे तो कहना भाई तू पहली फुर्सत में निकल। और हाँ, साइबर फ्रॉड हो तो चुप मत बैठो और एक नंबर याद रखो 1930, ये डायल करना, कंप्लेन करना और इससे अवेयर रहना। और जो आपके हाथ में मोबाइल है उसको जरा सेफ रखो, उसका पासवर्ड स्ट्रांग रखो और नंबर याद रखो साइबर क्राइम का 1930। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: इस गाने में कागज के फूल देने की बात क्यों कही गई है?
2: कागज के फूल लाऊं तेरे लिए।
1: जब हम प्यार में होते हैं ना तो थोड़े पागल होते हैं और अपने महबूब को कुछ ऐसी चीज देना चाहते जो उसके पास हमेशा रहे, तो इसीलिए अगर वो नॉर्मल फूल देता तो मुरझाया जाता, तो इसीलिए उसने कागज के फूल देने की बात की है। इस गाने में आशिक अपने प्यार के उस स्टेज पर है जब वो अपने आप को सौंप देता है और वो स्टार्टिंग में नास्तिक होता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार इंसान को बदल देता है और वो आस्तिक बन जाता है और उसके लिए दुआएं मांगने लगता है। कहीं ना कहीं इस गाने की कहानी नोटबुक इस फिल्म से मिलती जुलती है। इस फिल्म में आशिक अपने महबूब से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वो कहती है,
3: क्या चाहिए तुम्हें?
4: मुझे नीले शटर्स वाला एक सफेद घर चाहिए।
1: और 7 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं होती। इस दरमियान उस आशिक ने अपने महबूब के लिए घर बना दिया और अब उस महबूब की शादी हो रही है, तभी वो न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखती है। नवजोत आहूजा का यह गाना कहीं ना कहीं इस फिल्म के कहानी से मिलता जुलता है।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

वेलकम बैक ऑन MGM 90.8 FM बंदे का नाम है अदनान एंड आप सुन रहे हो मेरे साथ थोड़ा देखो क्या हो गया गड़बड़ हो गई थी अभी एक बटन दबाने के चक्कर में गलत बटन दबाया मेरी बात शुरू हो गई थी लेकिन माइक ही ऑफ था तो इस वजह से बीच में हल्का सा गैप आ गया। बाय द वे आज तो है वीकेंड का वार शनिवार और शनिवार के बहुत सारे प्लान्स हो गए आपके मुकम्मल कीजिएगा। और हाँ अब कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है तो एडवांस में नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बाकी गरबा पार्टनर है या इस साल भी आप सिंगल हो, अगर सिंगल हो गए तो कुछ नहीं भैया अपने तो नॉर्मली दिन अपन कर्णपुरा यात्रा जाएंगे, अगर पार्टनर साथ में होगा तो आप नवरात्रि में दांडिया भी खेल सकते हो। खैर अब मैं तो चलता हूँ अपनी गली, अपना ख्याल रखिएगा और ये वीकेंड एंजॉय कीजिएगा विद सुपर डुपर हिट गाने। टाटा बाय बाय। बाय द वे अपनी मुलाकात डायरेक्ट मंडे नहीं कल भी होने वाली संडे 90s वाले शो में। टेक केयर, टाटा बाय बाय और एंजॉय अगला सुपर डुपर हिट। MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।
2: ही तर फक्त तुझ्या आणि माझ्या क्षणांची कहाणी, तुझ्या माझ्यातली क्षण, तीच तर आयुष्याची

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: क्या?
1: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ। और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था। चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653533।

ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन क्या कंप्लेंट के बाद FIR होती है क्या? क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर ना एक बड़ा डेटा सामने आया है। पिछले कुछ सालों में लगभग 6 साल के अंदर साइबर फ्रॉड की 54 लाख से ज्यादा कंप्लेंट सामने आई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.4% के आसपास ही FIR दर्ज हुई है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो 54 लाख कंप्लेंट में से लगभग 1,30,000 केसेस पर ही FIR हुई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं होता है, समझ सोचिए आप। देखो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है साइबर फ्रॉड में, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपने कंप्लेंट करने में देर कर दी तो फिर FIR करके फायदा नहीं होता। इस वजह से जैसे ही आपके साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और कंप्लेन करें, फिर उसके बाद FIR की प्रोसेस शुरू होती है। साथ ही साथ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी कंप्लेन होगी पैसे को रोकने के ट्रांजिशन पर एक्शन लिया जाता है। और प्रिवेंशन के लिए कुछ बेसिक बातें भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि अपने शहर में भी साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से OTP किसी को नहीं देना, UPI पिन शेयर नहीं करना, अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना, और फोन पर कोई भी बैंक या पुलिस बनकर आपको कॉल करे तो कहना भाई तू पहली फुर्सत में निकल। और हाँ, साइबर फ्रॉड हो तो चुप मत बैठो और एक नंबर याद रखो 1930, ये डायल करना, कंप्लेन करना और इससे अवेयर रहना। और जो आपके हाथ में मोबाइल है उसको जरा सेफ रखो, उसका पासवर्ड स्ट्रांग रखो और नंबर याद रखो साइबर क्राइम का 1930। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड। Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।